0: गोली खा कर जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर रोशनी भी दब जाए।
1: You are listening to the Tsetse Fly Middle East radio program.